0: सच सब स्वपाए वाहिगुरु जी का
1: वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभ

0: हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जान मेरा मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करूं बिनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना का पाठ भाई साहब जी पासों सरवण किया। पवित्र बाणी दी विचार नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है समय दी संभाल करदे होए मन बिरतियां नूं एकागर करदे गुरु चरणां विच जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द दे राहीं मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन बड़े प्यार सत्कार दे नाल समझण दा यतन करिए जी।
1: वडहंस महला तीजा गुरमुख सब व्यापार पला

आप जी रोजाना इस अस्थान तो अमृतमयी बाणी की लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज सतगुरु जी वल्लों वडहंस राग दे विच जो पावन शब्द उचारण किया है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 568 दे उपर सुभाहिमान है। गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी कृपा करते ने हर एक मनुखी जीव नू जिहड़ा मनुख है इंसानी जामे दे विच आया है सर्व संजा उपदेश दिंदियां होया

बीज बीज लो, अंदर बीजना है बाहर नहीं। नितनेम अपने अंदर बीजन लई करना है, बाहर दिखाने वास्ते नहीं। अंदर बीजिया जाए, बीजिया ही हरा होना है ना, जो बीज रहे हैं वही हरा होना है। जो बीजांगे, महाराज कहिंदे जेहा बीजे सो लुणे कर्मा, संदड़ा खेत, जो बीजेगा उही कुछ मिलना है। इसलिए नितनेम अंदर कर, नाम दा बीज अंदर बीज, ताकि तेनू फल भी चंगा मिल जाए।

गुरु महाराज जी कृपा करन, ये पावन शब्द शब्द दी विचार साडे तुहाडे सारयां दे मनां विच वस जाए। असी नाम दे वपारी बनीए, नाम दी खेती करिए, नाम दा बीज बीजिए, ताकि अमृत फल अमृत रस सानू मिले, जिहदे नाल लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले जीवन हो सके। अज दी विचार करदे आं, बेअंत गलतियां भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देण, अगे तो समत देण, तुहाडे सारयां दीयां हाजरियां लेखे लगण, चढ़दी कलां वाला जीवन वाहिगुरु जी बख्शन। गुरु अमरदास महाराज जी दे अज दे पावन बचन अपने हिरदे च

इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंत आए।

सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रशिया रियायत, देग तेग फतेह।

शर्मा इक ओ ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करोहा दै रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो आभात दै मोहे बचाबो हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सावै हिरण को आय संगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखा मारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आभात दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लियो मोहे राखण हारे साहेब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जो की शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बदकियो कटकट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछने कट कट के पढ़ पढ़ की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजातर्थ तव देह

राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया करशां सुख मन वसिया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तहरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशब तित कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुदवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से राम हर के लागे कह नानक तसुक होआ तित घर अन्नहद बाजी आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाए उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर रे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर।

जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उदारो एह बस्त जी नहीं जाई नित नित रखो और तारो।

सतगुरु का दिलासा नाम ते आइन सुख फल पाइन अठ पैर अरद्ध तेरी शरण तेरे परवस पंच दुष्ट ले सद्द है ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक।

जान सरन जान तेरी सबते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

साजी प्रया संग तू चाह दाता कपाया कुछ देवे तेरे पिता तू चलो सबसे बेला सिंह कर या संग तू चाह कर या संग।